ट्यून कर चुके 100.4 एकर्स पानी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आरंभ करिबा कार्यक्रम मो देश साथी भारत रे उद्भावित अनेक जिनिस सारा विश्व रे परिचिति लाभ करिछि भारतीय परंपरा विदेशरे बहुत ख्याति अर्जन करिछि विदेशी पर्यटक माने विदेशी नागरिक माने भारतीय परंपरा भारतीय

सधी महर्षि पतंजलि को भारतीय योगर जनक बोली कुआ जाय थाए सिद्धांगर प्रसिद्ध योग सूत्र माध्यम रे योग को गोटे व्यवस्थित रूप दैथिले पतंजलि ग्रंथ रे योगर आठटी अंग बा अष्टांग योग विषय रे वर्णना करा जाय छि जम नियम आसन एवं प्राणायाम यही श्रृंखलार प्रमुख आसन अटंती मन को नियंत्रण करिबा एवं चित्तर वृत्ति को शांत करिबा यही योग गुड़िकर मुख्य लक्ष्य हाँ साथी आज मध्य पतंजलि योग सूत्र सारा विश्व पाई मार्गदर्शक साजिछि

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी।

0: भी।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनी छुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:05 नीलाचल धामर अधिपति भक्त वत्सल पतित पावन श्रीजगन्नाथ महाप्रभु श्रीचरण से कोटि कोटि प्रणाम जणे आपणंक स्वागत जणौछि आज सकाळर भक्तिमय परिसर को अर्घ्यथाळी को

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्यथाळी आज सकाल शुणी आपणी स्मृति को पुरी रथयात्रारे तीनोटी रथ नंदीघोष तालध्वज एवं देवदलन नंदीघोष श्रीजगन्नाथ रथ तालध्वज श्रीबलभद्र रथ एवं देवदलन देवी सुभद्रा रथ देवी रथरे श्री सुदर्शन मध्य विराजमान करती किंतु बंधु एही सब रथ गोटे गोटे हेले हे से मानकर अनेक नाम रही भाई नाम पछर तात्पर्य कौन एही नाम एमिति काहेकि रखा जाइछि कौन रही नाम पछर कहानी हाँ बंधु एही नंदीघोष रथ नंदीघोष अछि दुईटी शब्द नंदी एवं घोष नंदीर अर्थ आनंदमयी एवं घोषर अर्थ हेउची ध्वनि एणु नंदीघोषर अर्थ ब्रह्मानंद प्रदान करुथिबा ध्वनि घोषर अन्य अर्थ मध्य मंगल ध्वनि एणु श्रीजगन्नाथ रथयात्रार अन्यतम नाम हेउची घोषयात्रा जहां समस्तंकर मंगल निमन्ते उद्दिष्ट हेथाए

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीत अर्घ्य थाली आज सकाल शुणी आपथी स्मृति को समय बर्तमान सका 6:23 तेरे बलराम दास कहानी सहित आउ एक कहानी मध्य से लिखिंट से अनुसार थे रावण देवदेव महादेव दर्शन पर हिमालय को जाता से शिव बाहन नंदी रागी से चापुड़ाटे मारी नंदी से नहीं ब्रह्मा पाखरे अभियोग करते तेणु से अपमान प्रतिशोध नेवाई राम रावण युद्ध बेले ब्रह्मा नंदी को लंकार युद्ध क्षेत्र को पठाई बलराम दास वर्णना अनुसार ब्रह्मार वचने नंदीकेश्वर गला गरुड़ध्वज रथ चक्रे बसला शरीर लुचाई से गोपते अच्छी रही पूर्वर साप अर्थे ब्रह्मार बर पाई घो घो करी करी राव घोष शुभे सुनीत उसत होइले सर्वदेवे एई उपाख्यान अनुसार नंदी घोष रथ चलला बेले ता चक्रु जो शब्द बाहरे ता शिव बाहन नंदी घोष बा घो घो किरी किरी शब्द बोली कहा जाए गुप्तरे रथ चक्रे बसी रही नंदी से घोष करिथाए ताहा सुनी समस्ते आनंदित होइथांति उत्साहित होइथांति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मध्य वैदेहीश विलास काव्यरे ग्रहण करिछंति किंतु एही शब्द को से सर्जन गर्जन बोली कहिछंति

सुनी चुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:40 आरंभ करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत आज शुणु यार 75 तम भाग प्रयोजना सुहास महांती।

0: समय वर्तमान सकाळ 6टा बजे 55 मिनिट सुनंतु संस्कृत रे संवाद रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम् नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000

सुनिश्चिंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकल सतटा सुनिश्चिंदी आज सकल साथी स्मृति को

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की

0: का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सूरज की किरणें दस्तक दी है, सूरज की किरणों ने दस्तक दी है, फूलों ने हवाओं से दोस्ती की है। उठिए जनाब, नई सुबह आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि हर दिन किस्मत नहीं बदलता, लेकिन हर सुबह किस्मत बदलने का एक नया मौका जरूर देता है। सो अपन समस्त को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह सकाळ। जो सुमंग और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त स्मृति। अब अपन मन सुनिछंदी अपन मनंकर पसंदीदा एफएम रेनबो चैनल, यस, जहाँ कही थे सबो दिन सबो बड़े सबो मुहूर्त रे दिल से दिल तक। तो चलंतु ना सुबह सकाळ सो जेतेबेळे स्टार्ट हेगलाणी, सकाळ सकाळ आपण माने जेतेबेळे स्मृति को सुणिछंती, आपण मनकर मनोरंजन केमिति भी हबनी, मनपसंद्र गीत सहित किछि कथा निहाती भावरे रहिबो, एन्जॉय करिथांतु, आम सहित कनेक्टेड रहिथांतु।

अगर कोई ऐसा देखे तो दिल धड़कता है, और जब दिल धड़कता है तो दिल प्यार में पड़ता है। तो दोस्तों, ये प्यार का जो रंग है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। मतलब जैसे सूरज जैसे पहली बार उगता है और वो जो किरणें होती है ना, उसी टाइप की ही होती है ये प्यार की किरणें, प्यार का रंग। तो आज दिनटा टिके अलगा, टिके रंगीन, टिके मनमोहन, कारण आज आम कथा हूँ रंग विषय। बिल्कुल, रंग आम जीवन में केवल सौंदर्य नुहे, भावनार मध्य परिचय। आउ सेही रंग मानक भितरे गोटे सुंदर रंग होउची जोटा आमर विशेष करी झियो मानक सहित जोड़ा जाइथाय। ठीक गेस करी चंदी, पिंक रंग, रंग माने गोलापी रंग, जोटा स्नेह, प्रेम, कोमलता एवं आशार प्रतीक। सो आपण भावुथिबे स्मृति सकाळ सकाळ पिंक रंग विषय काहेकि, पिंक कलर विषय काहे कथा होची। बिल्कुल, कारण अच्छी, कारण आज आम सेलिब्रेट करुछु नेशनल पिंक डे को। अच्छा, आपण केबे भाविछन्ति सकाळर आकाशर सूर्योदय बेले जो गोलापी छटा देखाजे, सेटा काहेकि आमको एते भल लागे कहिले? कारण ए रंग मनरे पॉजिटिविटी आनिथाय, सकारात्मकता भरी देथाय, जोडा कि मन भितरे शांति, सहानुभूति एवं ममतार संदेश देथाय। आज दिन रे विश्वर अनेक स्थान रे ए पिंक डे को आमे सेलिब्रेट करुछु, कारण ए डे को सेलिब्रेट करिबा पछरे मध्य बहुत किछि कथा रहिछि। फ्रेंड्स, ए गोलापी रंग केवल एक रंग नुहे, एहा गोटे मेसेज, गोटे संदेश। कठिन समय रे मध्य कोमल हृदय रखिबे, व्यस्त जीवन रे मध्य हसिबा सिखिबे एवं अन्य मानक प्रति भल पाइबा रखिबे बा भल पाइबा बांटिबे। आउ एटा ही होची आजर डेरा स्पेशियलिटी।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप हमसे कनेक्टेड है और आज की सुबह आप सुन रहे हैं आपकी हम सफर होस्ट स्मृति को। तो आज की इस खूबसूरत सुबह में हम बात कर रहे हैं ऐसे एक रंग के बारे में जो प्यार का भी प्रतीक होता है, अपनापन का भी और खुशियों का भी प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, आज है नेशनल पिंक डे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ पलों में हम भरने वाले हैं आपकी सुबह में गुलाबी रंग की मिठास, मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिविटी। और हमेशा स्मृति बोलती है मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की सुबह को खूबसूरत बना सकती है।

सदी ए जो पिंक रंग बा गोलापी रंग को देखिले मनरे एक अलगा कोमल अनुभूति जाग्रत होइथाय। ए रंग केवल सौंदर्यर प्रतीक नुहे, स्नेह ममता भल पाइबार मध्य प्रतीक। जेमिति गोटे गोलाप फुलर कोमल पाखुड़ा हृदय को छुई जाए, सेमिति पिंक रंग आम मन को शांति सकारात्मकतार भरी देइथाय। भल पाइबार अर्थ केवल दुईट हृदयर संपर्क नुहे बंधु, मार ममता, बापांक स्नेह, बंधुत्वर आत्मीयता एवं मनीष प्रति मनीषर सहानुभूति, ए सबु भितरे भल पाइबार रंग रही थाए। सो आज नेशनल पिंक डे अवसर रे आम जीवन रे टिके भल पाइबा बढ़ी भरी दबा आउ अन्य मानंक मध्यरे मध्य भल पाइबा को स्प्रेड करिबा, अधिक सहानुभूति एवं अधिक हस बांटिबार संकल्प नेबा। बंधु जीवन रो कैनवास रे जदि भल पाइबार रंग भरिबा को चाहंती ना, तेबे पिंक रंग परी कोमल हृदय रखंतु, कारण भल पाइबा जोठी थाए सेठी प्रत्येक दिन हेई जाए गोलापी आउ सुंदर।

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल आपने शुणी आपण साथी स्मृति को सो चली शुभ सकाल सो आज डेट हूँ 23rd June एंड आज आउ गोटे सुंदर दिन को आम सेलिब्रेट कर इंटरनेशनल ओलंपिक डे यह दिन टी आधुनिक ओलंपिक आंदोलन आरंभ एवं यार मूल्यबोध को स्मरण करने पालन कर 1894 मसीह दिन आंतर्जातिक ओलंपिक कमिटी गठित होता 1948 ओलंपिक डे पालन आरंभ होता बंधु दौड़ा केवल पदक नुह निज स्वप्न को छुईवाई खेल केवल जितना नुह निजक गढ़ फ्रेंड्स ओलंपिक केबे खेल गोटे प्रतियोगिता नुह यह मनिषर साहस श्रृंखला बंधुत्व एवं सम्मान प्रतीक पृथ्वीर विभिन्न देश भाषा एवं संस्कृतिर लोक एकाठी प्रमाण करती खेल हेउची एकतार भाषा ओलंपिक डे मूल संदेश हेउची मूव लर्न एंड डिस्कवर अर्थात चलंतु सिखंतु एवं नुआ किछि अन्वेषण करंतु

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक, और आज की सुबह आपके साथ हूँ हम मैं यस आपकी हम सबर होस्ट आरजे स्मृति आपके साथ जुड़ी हुई है आज की सुबह, और सो चल रहा है सुबह सो कड़ा। सो 23 जून आम आज सेलिब्रेट कर इंटरनेशनल ओलंपिक डे को। सो आज दिन में एमती गोटे कथा निज मन भितर भापर जे प्रत्येक दिन किसी समय खेल व्यायाम कि शारीरिक क्रियापाई देवा उचित, कारण सुस्थ शरीर ही सुस्थ मन आधार एंड सबुले से स्मृति आपही था जे गुड हेल्थ रखा निहाती भाव आवश्यक बिकज हेल्थ इज वेल्थ। फ्रेंड्स जीवन एक ओलंपिक ट्रैक पर केबे जितिबो केबे हारिबो, किंतु सबुठारु बड़ कथा हेउची दौड़ीबा केबे बंद न करिबा उचित।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: समय वर्तमान हेबा पई जाउछि सकाळ 8:00 आमर परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली रो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
4: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत

0: अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
0: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है,
4: मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक

0: यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु

0: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: referring to his

0: मैं संतोष मल्लिक कहूँ नयागड़ापड़ा भरतपुर जिला जाजपुर।
1: क्या बात है संतोष भाई, वेलकम करछु एफएम रेनबो को। बहुत सुंदर स्वर, बढ़िया लगिला सुनिया पे गीतटी।
0: आज जो मा हाथ रंधा जो खाद्य जो प्रश्न करी हाथ रंधा खाद्य विषय कौन कह तो जहा कर पूरा सुमान अमृत तेणुक माँ हाथ रंधा कथा न कहले भी सर
1: सब
0: सबुठ मो माँ भल रोष करती चूना मस बेसर आयाबीन कसा बढ़ी तरकारी बहुत बढ़िया करती आते जा माँ हाथ रंधा कथा कौन कह ये तो सी तो जहा करे तो सुंदर आग टे भाजले भी समृद्ध
1: बिलकुल
0: माँ पर कह पार
1: अच्छा माँ भी अच्छा
0: माँ भी
1: अच्छा माँ भी रांधिक दौरान से जो जिन
0: आगया,
1: आगया, आगया। क्या बात है। अच्छा जिते डिमांड तो निहाती भाव में करते माँ आज ये रोसे कर आज से रोसे कर इच्छा हो सब हाँ हाँ हाँ
0: हाँ मन हुए आज मिल कर कसा टे कर आज मत बाटन देखिए कर
1: अच्छा बहुत बढ़िया लगे।

0: सुन चाहते आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल शुणी आपण स्मृति को सो चली डायर एंड लाइव एंड आज आम कथा हूं माँ से हाथ रंधा विषय जहाँ आपण मैंने सब मिस कर यस 0671 2303153 स्मृति सहित कनेक्ट हो पारे एफ एम रेनबो देखिए आज जे कलर आसिकले किए अच्छा हेलो
1: मैडम नमस्कार गीता कहली।

0: प्रशांत
1: भाई वेलकम करछु एफएम रेनबो को बढ़िया लागिला माने स्टार्टिंग डा परा बड़ा गीत रे बड़ा भजन रे स्टार्ट करले अपन बढ़िया लागिला ठीक है नुआ टाइप रो अच्छा
0: अरे मु सब बड़ किछ नुआ ही कहिया के
1: चेष्टा करंती एटा बहुत बढ़िया जिंस बहुत भलो गुण एटा अपनकर तेबे कोहंतु प्रशांत भाई मां को हाथ रंधा विषय आज हमें कथा होचो कोन रहिछि मां को हाथ रंधा
0: विषय मां अपन को सेई मां को हाथ रंधा भीतर कोन वास्तवता अछि ताकु टिके विश्लेषण करिवा
1: निश्चय
0: माँ दीटा अक्षर माँ दीटार आकाश आउ माटी ए दीटार सार मंगल बा सारांश माँ का हृदय रे बास करिथाए जोटा आत्मा माध्यम रे रोसे रे ही प्रवेश करता है मोर विश्वास जा करती से अमृत है जाए मो माँ का गोटे आलु संतुला थिला
1: ओके
0: से आलु संतुला किसी एमती भाव में करदेवे जीरा सुतन एमती देखिए बहुत सुंदर लगे मैम
1: अच्छा माने किसी मसला पड़ोनी पूरा साधारे संतुला
0: रसुण एमती कौन पकड़े बढ़िया से आलु संतुला बर्तमान बर्तमान सभ्यता जो गोटे आत्मीयता भाव प्रवणता ये सब जिनस कमी
1: आसगला
0: सांघातिक कमी आसगलानी तो सब जिन पड़ते स्वाद
1: आसवाद आसुनी राइट बिलकुल बहुत बढ़िया लगिला निश्चय पूरा निच्छक कथा टी को ही आपण कहउचंती सेतबेले बिना प्याज रसुण रे बिना मसला रे मां जो जिनिसटी स्नेह रे रांधी दउतला सेटा आपणकर स्वास्थ्य पाई मध्य हितकर होतला माने आपणकर केबे भी देह खराब होयनी से हाथ रंधा खाइले बा किछि खाइले
0: से आत्मा रे माने सत्यता शुद्धता और पवित्रता थिला मैम
1: बिल्कुल थैंक यू सो मच आज कॉल करथिवार प्रशांत भाई
0: आपनको चर्चा सकाळ महाप्रभुको उपर बहुत सुंदर थिला प्रथम भजन ती बहुत भावपूर्ण थिला बहुत सुंदर थिला
1: थैंक यू दिल से थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रखुची
0: नमस्कार
1: नमस्कार सो माय फ्रेंड्स आपण माने भी फटाफट आम सहित कनेक्ट होंदु बहुत सुंदर सुंदर कथा आपण माने आम सहित कनेक्ट हेकि कहउचंती आम आम फ्रेंड्स माने बहुत प्यारा प्यारा कथा कहउचंती बहुत बढ़िया लगुच माँ से हाथ रंधा विषय आज आम कथा होचु आउ यही जरिया रे केते गुडे डिश भी मन पड़ जाऊ अरे हाँ यार सेमती गोटे खाइवा थिला आम खाऊ आजिकल पियाज अदा रसुण मसला माछ मंस ये सब जिनस पूरा भाषुचु फास्टफुड ये सब बट से जो खाइबा से सब जिनस से जो बिना मसलार जो या फटाफट रांधिद करदे माँ को हाथ रंधारे तो सेठा हमें आज भी मिस कर देखियो आज जो कलर आसगले कि अच्छा हेलो
2: हेलो स्मृति मैम शुभ सकाल शुभेच्छा अभिनंदन
1: अभिनंदन शुभ सकाल मुना भाई टोन मिसी कौन करवा
2: समीर
1: खटुआ अरे सत कथा आप दि जन मान टोन ना प्राय मिसी जाए मु बुझी पारे ना कन्फ्यूज हुए सॉरी सति भाई अच्छा समीर भाई केमती अछंती
2: आज्ञा भलो अछि जोनो तो टॉपिक भलो रहउछि आज्ञा
1: आपण लगउछंती आ
2: जोगो दिन जोनो लागिबा कथा हमर लागिलानी किछि नियमित श्रोता आछथि आज्ञा डेली दिन को दि थोर लखा के करछथि छाड़ नथि
1: समस्ते टिके मानते पालन करते बहुत भल हाँ रिक्वेस्ट कर सेमती किसी हो भी पार्बनी कारण आम बर्तमान जो कल नौ आपर आम रैंडमली नौ सेमती कहार नंबर कि कहार आईडेंटिफिकेशन आम जानूना जहार कल आसला बस आम रैंडमली नौ
2: निश्चय
1: कहतु
2: मटन
1: माने मटन घर को आसीबो माने मा ही रांधिबे
2: ना
1: से बेले तो घरे के ना अच्छा माने मैरिज कले ना चली जाइतिले
2: ओके
1: सुंदर भाव कथा हम सहित बहुत बहुत धन्यवाद कॉल कर।

0: सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सोई चली छी डायल इन लाइव आपण का साथी स्मृति रही छी आज रे सुंदर सकाळ रे आ पचर छी आपण मानन को जे मां कर सेई हाथ रंथा कथा जोटा को आपण माने सब बड़े मिस करंती एंड जेते दूर रे थिले मध्य मां कर सेई हाथ रंथा कथा मने पड़ी जाय जेते बेले सेई डीएसटी आपण का सामना को आसी थाए। हेलो
1: मा ठारु के सुंदर नाही मा डाक ठारू

0: दीदी नमस्कार।
1: क्या बात है, इतने सुंदर पूरा ट्रैक रे गाई जो यार, बढ़िया लगला।
0: धन्यवाद।
1: अच्छा परिचय कह दियो।
0: साई
1: बेलपड़ारु आम सहित कनेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत टे गाइल माँ विषय। माँ कौ हाथ रंधा टी बहुत भल लगे तुमको?
0: मो मामा तो सब रोसई पूरा बढ़िया करे, हेले गोटिए प्रॉब्लम है या जदी माने अत्यधिक प्रशंसा कर दो ताल टिके गड़बड़ होई
1: जाए। एडा थाए एडा सब मामा को टिके टिके थाए दोस।
0: आज्ञा जत्ते बेले भी जा बनई थाए हम पचरी भलो है जी ना? हां भलो है जी, ठीक ठाक है जी। एमती हम कहू जदी प्रशंसा एमती कर दो नाही, इत्ते सुंदर इत्ते बढ़िया है जी, जदी अत्यधिक प्रशंसा आई गला आतर को जत
1: अच्छा माने एटा काही होय जानिछ? माने जेतेबेले से रांधंती त सेतेबेले तमनको पचरा जाय जे केमती लागुछि, त तमने जदि कहबो हां ठीक ठाक अछि, त से तार नेक्स्ट टिके बळकु से आउ टिके भलो राध्या पे चेष्टा करती जे पिला मानको जेमती भल लागिवो खाइबा पई। किंतु जदि पूरा प्रशंसा कर दो ताले से ओवर कॉन्फिडेंस हे जांदी नै कि?
0: सबबेले एटा होय, आमे जानि गलुनी से भाई बेसी प्रशंसा करबुनी।
1: बढ़िया। अच्छा सही तथा भी माने को डिश टी भल करती माँ? माने सब तो रांधती किंतु कोटा भल करती?
0: मते तो वैसी माने मटन चिकन माछो एटा तो बढ़िया हुए, तापर घाट तरकारी डा एटा एत्ते सुंदर हुए।
1: हाँ।
0: माने मु सब बेले भी कुए एटा करिया पई रोटी संगरे घाट तरकारी।
1: हाँ।
0: मते भल लाग खाइया पई।
1: अच्छा।
0: जे पई सब बेले कुए एटा राती रे करिवो।
1: ओके अच्छा बहुत बढ़िया। थैंक यू साई आज कॉल करी छौ, इते बढ़िया हसई लव यू, मजा लागिला। थैंक यू सो मच कॉल करथिवारु।
0: धन्यवाद दीदी, रहली नमस्कार।
1: नमस्कार। कनेक्ट हुवंतु फटाफट आम सहित 0671-230-3153 ए नंबर रे। स्मृति रहिछि एंड पचारुछि माँकर सही हाथ रंधा कथा आज आम कथा होउछे। देखिबा आउ जने कॉलर आसीगलेनि कि अछन्ते? हेलो
2: हेलो मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ। के कहउछन्ति भाई?
2: मैम प्रफुल्ल भगवान कहउछि, कुआरपाल माणिया मंदरु।
1: प्रफुल्ल भाई वेलकम करछु एफएम रेनबो को।
2: मैम गोटे कथा कहार अछि।
1: हाँ कहुनांति।
2: सेदिन त पचारिथिले चलचित्र कथा, मु त बहुत चेष्टा कलि केभे लागिलानि, भल उत्तर भी थिला आउ कोन करबि, बाछि बाछि रखिथिलि सेना फेना देखिथिलि। आमर त फासु कहिसारिथिलि रामदेव भाई विषयवस्तु उपरे, आउ मु किछि कहिबिनि। मोर गोटे अभियोग अछि मैम।
1: हाँ कुहन्तु।
2: मु कहिदेउछि कला, आमर बर्तमान जने भाई फोन करथिले, से कहिले ना समते बारम्बार फोन करछन्, आम फोन लागुनि। मैम मु तांकर गउछि दिने दिने तीन दिन रेगुलर लागुछि,
1: एते
2: काहे कम्प्लेन करछन्?
1: अच्छा अच्छा हाउ ठीक अछि।
2: आमे घंटा घंटा धरि लाइन रहिछि फोन करछु, काहे लागुछि काहे लागुनि से कथा ईश्वर उपर निर्भर, आपन उपर निर्भर। आउ जने भाई आमर हेते से फोन करथिले, कहिले मोर जमा लागुनि, काहे बारम्बार लोक फोन उठौल आउ अलगा लोक उठो बारम्बार। से भाई सप्ताह हेलानी आ सात दिन जकर लागिलानी आमर साहू भाई जने।
1: अच्छा अच्छा हौ ठीक अछि।
2: कोन से माने भाबुछन से माने खाली एकुटिया स्टुडियो फोन करनते आ फोन करिवे ना कोन?
1: ओके प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई
2: मोर तीन थर हेलानी, तीन थर दु थर गला परे थर
1: लागिला। अच्छा आमे समस्ते कनेक्ट होउचे धीरे धीरे, समस्तक सहित आमे कनेक्ट होउचे, आपण भी काम सहित कनेक्ट होउचंती, तो तेबे टिके एई जो राग रुसा मान अभिमान रहिबो परिवार भितर समस्तंकर थाए आम मानंकर मध्य रहिछि, तेबे सबु किछि बुझाबणा परे भी आमे आगो को बढ़िबा कार्यक्रम को सुंदर भाबरे आगो को नेबा। तेबे कोहंतु आज आम सहित कनेक्ट हेइचंती आपण आम सहित? ठीक अछि प्रफुल्ल भाई, आपण आम सहित कनेक्ट होती, तेज कहतु माँ का हाथ रंधा विषय आज आम कथु, माँ से हाथ रंधा विषय से इमोशन रे चली चु आम, कहतु कौन रही डिश टी स्पेशल डिश?
2: मैम देख मैम तो चलीगले मोर पचीस 2025 जानुरी चलीगले, कि माँ कथा मुझे कही पार, मो माँ हाथ रंधा कथा कहि आज कह चल सर ना।
1: अच्छा
2: माँ जी गोटे कानी सीरियो तरकारी कर बसिक दिन सारा खाऊ।
1: अच्छा
2: जी चकुड़ी पिठा कर चकुड़ी पिठा कले आहरी भल न कहले।
1: ओके
2: गोटे पानी छड़ा पिठा जी कर 15 दिन लुचे रखी थब
1: मानते कौन कौन से मत कहते बुझे
2: पानी गोटे जो चूना टाक आम चक सीझा हाब चकटा हाँ
1: से
2: पानी पूरा पता हम पानी फुट से पिठा टा छणा हाँ।

0: না পূজা জানে না মন্ত্র ভক্তি জানে না, জানিছি যে জানিছি খালি তুজে মোর মা, তোহরি মন্দিরে আজি কেতে যে পাপি কেতে যে তপি জানতি দীপ জাড়ি, মা তো পাদর ধুড়ি দে মমথারে বলি, জনমি জনমি গুণ গাউথিবি করি তোতে জপা মাড়ি, মা করি তোতে জপা মাড়ি।
1: क्या बात है, नमस्कार। बहुत बढ़िया।
0: नमस्कार आज्ञा, नमस्कार। जय जगन्नाथ। कटक सीडीए सेक्टर 6 रु मु दिवाकर सेठी कहुतिले। आज्ञा
1: बिल्कुल दिवाकर भाई, बहुत सुंदर गीत टे गाइले, माँ को ऊपर बहुत बढ़िया लगिला, सुंदर स्वर रे गाइले। अच्छा कहंतु, आज आपण आम सहित कनेक्ट हेइचंती, मे बी आपण आज हमर बधे शेष श्रोता, तबे कहंतु माँ को हाथ रंधा विषय आज हम कथा होचु, कोन रहिची?
0: बहुत बढ़िया कथा, बहुत बढ़िया कथा। सुंदर परिवेशन, सुंदर सुंदर कलर्स मैंने कहले शुणुपर्यंत आई शुणी लास्ट मुझे ना मुझे चेषा कर स्मृति मैडम
1: अच्छा
0: आसे जहाँ अल्प चेष्टे मोर भी लगेगा बहुत मान अभिमान कम्प्लेन सब चलिए ता भर कि तथा मुझे केत न कैसे नियमित सबुदिन न करे कि दी बेला भी न करे बेले बेले इच्छा हुए हाथ चली जाए बहुत बढ़िया कथा, बहुत बढ़िया कथा। माँ को उपरे जो माँ को रोसी विषय माँ को खाइबा पीवा रोसी करवा चर्चा विषय चली बहुत कथा आ माँ को लेकिन तो सृष्टि माँ को लेकिन तो आरंभ माँ को पाखर हूँ शेष गोटे प्रकार मुझे जाने तेणुक माँ को कथा कहले तो तार बोध अंश नहीं तो छोटिया छोटिया दीटा कथा कह पूरा देशी खाद्य कथ कह गाँव में बढ़ी छुआ समय गाँव में पिला पिली जिते समय कथ कह मोर मन पड़े तो लोक बाहर बहुत जिनस किणिकी खाऊ आजिका डेट रे कोलथ डाली मिलूची हूं तो समग्र कोलथ मिलू ना सहर मानक कोलथ आ मांडिया ये दिटा प्रायत बेस आवेलेबल अच्छी मिलूची से समय कथ कह आम मो बो आम तो माँ बो डाक छोट बेले तो एत सुंदर भाव आमर बारिघर मानक कथार कह बारिघर मानक हाथ बसि जाए बर्षा दिन समय आम बारी में खड़ा गस गोटे गोटे चारि हाथ दस हाथ दूर गोटे गोटे खड़ा गच लगी रोई थे से खड़ा गच ये मसे पंद्रह दिन एमती झंका बर गच पा गोटे मोटा खड़ा इतने मोटा खड़ा आते मीठा से खड़ा सब से खड़ा मु कौन करे गोटे आईटम मुझे जोटा से देखा पाऊनि कि कौन मो मिसेस भी करानी से करना से कौन करती ना गोटे डाला टे नहीं डालारे डालाए गोटे दा टे धरिकी से गच दी काटिक नहीं आसवे पूरा छनसुनिया खड़ा शाग से खड़ा शाग सुंदर भाव आनी बाछी बुछी तल उपर भल से पत्र देखिकी गोटी गोटी कर बाछबे मुझे लक्ष्य कै बो कौन करू अच्छा से खड़ा शाग पुआ खंडे हो सब दिटा खंडे कदमी पत्र आणवे कदमी पत्र से खड़ा शाग को एडे सुंदर भाव धुआ हाई शाग को सजाड़ी पूरा जाकी दुखी कर पूरा गुड़ेकि बांधिदेवे बांधि दिटा खंडे पुड़िया करते कौन काठ जाल घसी जाल जो से घसी चुली रे से पुड़िया को पकईदे पकईदे से हाँ अध घंटा खंडे पड़े तो रड निया थो रोष चल रोष सरीगला निर पकईदे आगटा को पोड़गला पत्र तो किसी पोड़ जाइए तल परत थी एमती से पत्र पोड़िया भितर जी बांफ पाइब शाग पा भरिकी सीझी जाइए सब अच्छा सी गोटे खड़ा शाग आणिकी सुंदर भाव में रसुण दि चार पाखला छड़े छेतिबे काटे कंचा लंका किसी देवे आए कंचा सोरिष तेल से आसला एत सोरिष तेल एवं तो बाग आसुनि से गणेश मार्का सोरिष तेल से आसला सोरिष तेल टी पकई गोटे खड़ा शाग को गोटे भाजवा बदल चक्का करदे चटनी खड़ा शाग पोड़ा पोड़ा चटनी
1: सतरे नुआ जिन
0: ଆପଣ
1: ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ବେଳୁ
0: ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ତ ରୋଷେଇର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଅଛି ଦି ଜଣ ଲୋକ ସବୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି ଦି ଜଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ 300 ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି
1: ଆଚ୍ଛା
0: ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात

0: 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, उम्र भर याद आती है पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। तो इसीलिए जो है अभी उसी के बारे में बात करना चाहिए मेरे दोस्तों। ट्यून करी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कैटक 100.4, दिल से दिल तक। प्रत्येक मुहूर्त हो इम्पोर्टेंट, प्रत्येक समय ए प्रेजेंट हो इम्पोर्टेंट, तेणु सबुबले वर्तमान रे बंचिबा सिखिबा आवश्यक। आपणक साथ स्मृति रहिछि आज सुंदर सकाळ रे आपणमानक सहित 10:04 ऑलरेडी हेगलाणी। आपणमानकर फरमाइश र गीतर समय मध्य ऑलरेडी हेगलाणी। तेबे चलंतु आउ समय वेस्ट करिवानी, संगे संग आपणमानकर लव लेटर्स पडुछि आउ प्ले करुछि आपणक मनपसंद र गीत। आम सहित कनेक्ट होती राकेश रीता मामुनी एंड सुमित्रा जगत सिंहपुर आम सहित कनेक्ट होती एसएमएस मध्यम एंड शुणापी चाहते आशिक बनाया आपने फिल्म टाइटल ट्राक टी शुणापी चाहते एंड डेडिकेट कर टू ऑल लिसनर्स ऑल आरजे एंड ऑल एफएम रेनबो समस्त श्रोता मानू।

सुनिश्चित मनपसंद कार्यक्रम रेनबो एसएमएस ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे एंड आम सहित बहुत सारा लिसनर्स वर्तमान कनेक्ट होती एसएमएस पेज रे व्हाट्सएप पेज रे क्या बात है सो समस्त को धन्यवाद थैंक यू सो मच आम सहित एसएमएस पेज रे कनेक्ट होती जलील खान एंड सिमरन कटक रु शुणा चाहते गैंगस्टर फिल्म या अली रहम वाली ए गीत शुणापी एंड डेडिकेट कर सब लिसनर्स मानक सब आरजे अफ आकाशवाणी कटक स्पेशली डेडिकेट कर आरजे स्मृति थैंक यू सो मच टूना भाईना राजेश नायक गरीब खान एंड बासंती खटुआ शहीदनगर भुवनेश्वर

सुनिछन्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक स्मृति को सुनिछन्ती आज रे सुंदर सकाळ रे एंड सो चली छी रेनबो एसएमएस ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं यस दीवाना फिल्म रो गीत सुनिबा पई चाहि छंती वासुदेव त्रिलोचन कालिया बळिया कुन्नी नीनी लिटुनी बापा बोउ रईसुंगुड़ा सालेपुर कटक्रु लिखले स्मृति अपा प्रणाम शुभ सकाळ समस्त अनुरोध अनुरोध रोटे सुंदर गीत समस्त डेडिकेट करी चंती।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को 100.4 फ्रीक्वेंसी में हम आपके पास पहुंच रहे हैं। और जो लोग फ्रीक्वेंसी के बाहर हमको सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग में हमको सुन रहे हैं, उड़ीसा के बाहर से बहुत सारे श्रोताएं हमसे कनेक्ट हुए हैं, व्हाट्सएप में हमसे कनेक्ट हुए हैं। दत्तरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा हमसे कनेक्ट हुए हैं। अभिमान फिल्म का गाना मीत ना मिले मन का,

समय वर्तमान 10:35 सो चली रेनबो एसएमएस नेक्स्ट एसएमएस देखा व्हाट्सएप आम सहित कनेक्ट होती जितेन्द्र नीली माधवरू आम सहित कनेक्ट होती शुणापी चाहते दिल है तुम्हारा फिल्म छाया है जो दिल पे वो नशा है।

प्यार हो रहा। बिल्कुल, मौसम भी ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों कि ये सब आपका जो पसंदीदा गाना है ना, ये सब जब हम सुनते हैं तो बहुत ही और भी अच्छा लगता है। मतलब मौसम के साथ ये गाना एकदम चार चांद लग जाता है। हाँ तभी अपन जो भी था तो ना कहेंगे जोड़े

जाओ थन तो ना कहे कि आमा सहित कनेक्ट रही था तो एफएम रेनबो कैटेगरी 100.4 दिल से दिल तक अपन का साथी स्मृति रही जी आज रे सुंदर सकाल रे अपन मानन का सहित रेनबो एसएमएस सोरी सो आमा सहित कनेक्ट हे चंदी लक्ष्मी सरस्वती शिवानी माणियाबंध बडंबर आमा सहित कनेक्ट हे चंदी शुभ सकाल जय जगन्नाथ सब श्रोता मानन को जणई चंदी चितचोर फिल्म रो गीत गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा ए गीत टिको सुनिवा पई अनुरोध करी चंदी

ओके दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। और आज की सुबह आपके साथ आपकी हम सफर होस्ट जुड़ी हुई है, स्मृति जुड़ी हुई है। और रेनबो एसएमएस शो में हमसे जुड़े हुए हैं माता मंदिर रोड कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से कुछ श्रोताएं, मानसी एंड गौरव अरोरा हमसे जुड़े हुए हैं माता मंदिर रोड कीर्ति नगर न्यू दिल्ली एरिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कनेक्ट हुए हैं और सुनना चाहते हैं बड़े घर की बेटी, ये फिल्म का गाना। अयोध्या घर जिसका घर हो अयोध्या जैसा, ये गाना सुनना चाहते हैं नितिन मुकेश जी की आवाज में। तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना, ये नितिन मुकेश जी की आवाज और सुरेश वाडकर जी की आवाज में है।

समय वर्तमान 10:49 आम सहित डम्बरूधर सुरक्षा सहाय सहयोग भवन सेक्टर 13 सीडीए कटक क्रू कनेक्ट होती बोल राधा बोल फिल्म टाइटल ट्राक्टी शुणापी अनुरोध कर समस्त गुड मर्णिंग जनई तेज मां हाथरंधा विषय जो डायलीन प्रोग्राम चलता तो से विषय मतामत लिखले मां तुम हाथर डाली भात अमृत ठार् भी मीठा लुण कम हेले भी सेथिरे मिसी थाए तुम ममता तुम आंचल रो महकरी भोको भी निद भांगी जाए परदेशरे मने पड़िले आखिरु लोह आपे झरी जाए होटेल रो सहे पद ठारु मा तुम पखाल टिके भल मा तुम पाई घरटा लगे मो पाई स्वर्ग क्या बात है। बहुत सुंदर गीत मानने कविता लिखी तेज आप अनुरोध गीत शुणा।

बोल राधा बोल क्या बोले यार समय सरी सरी असलेणी से तबे चलंतु आउ गोटे मेसेज मुनौचे किशोरनगर कटक रु बाबन चंद्र पाल ममता पाल आम सहित कनेक्ट होती ओडिया आलबम गीत फुले झीर आउ थे ने भी मनीष जन्म यही गीत टी शुणापी अनुरोध करे पहुंचा आपण मनपसंद गीत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, और ये जूता। लगता है प्यार में आपके यहां जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: আমার পরবর্তী কার্যক্রম হিন্দি সংবাদ এবং পরে পরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লির কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नैफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threat for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट हॉबिट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज

अच्छी खूब सुंदर मिसेस टी मिसेस टी करी थी पूछा भुवनेश्वर रू परवर्ती मिसेस टी करिछंती आभा सेन राजकुमार भरद्वाज बिमल श्रीवास्तव मनी शर्मा टाटा स्टील प्लांट रू से लिखिछंती गुड आफ्टरनून नमस्कार आपणको मध्य मो तरफ रू वेरी गुड आफ्टरनून नाउ प्रति नमस्कार से लिखिछंती आमे आम ऑफिस रो 37 जन स्टाफ एकठी बसी खाउछो ओ आपणको प्रोग्राम सुनुछु से लिखिछंती कि आज टॉपिक मिसरे कि आमे ऑफिस रे एकाठी बसिला बेले पिला दिन रो कथा बहुत मन पड़े आमे कबाडी बहुचोरी क्रिकेट बहुत प्रकार खेल खेलुथुलु आज से सब कथा मन पड़िले भारी दुख लगे खूब सुंदर मिसेस टी करथिले आभा सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रो परवर्ती मेसेज टी करिछंती बिपिन दळई खोर्धारू से लेखिछंती पिला दिने लुचकाली खेल कथा आज भी मन अछि मोर से पुरुणा सांग मानंकु मु बहुत मिस करूछि से दिन आउ कम फेरिबो लुचकाली खेल बहुचोरी खेल एमती बहुत किछि खूब सुंदर मेसेज टी करथिले बिपिन दळई खोर्धारू सतरे साथी आम सीना बड़ हो जाइछ कि पिलादिन से स्मृति कौटी ना कौटी आमको मान मन पकेले आमको जेती खुशी दिए आती दुख लगे तेज आपण मान मतामत कौन रही आज चर्चार विषय को लेकिन पिलादिन आपण को कौ खेल खेल बेस भल लगे निजर मतामत आमको मेसेज करूँ मेसेज टाइप करूँ एफएमआर से टे स्पे निज ना मेसेज आउ ठिकना लिखि पठे दिंतु 09495963210 नंबर को आम ह्वाट्सअप नंबर टी हूँ 8895254200 तेज जल्दी जल्दी आपण मान मेसेज आमको लिखि पठे दिंतु

0: गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है।

0: और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसी अपने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच

0: कर रही तीन सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से।

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल DD न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो

श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इससे ये साबित हुआ

0: कहा कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू भी। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए

0: जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन
1: बसंती अरे बसी ओ बसी कहां है तू
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो मैं यहां बुरांस के फूल चुन रही हूं
1: अरे क्या करेगी इनका तू है
2: क्या करूंगी गमकुआ इधर बनाऊंगी क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है तो शरबत बनाऊंगी
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है हां क्या कचन अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे अरे चल ना जल्दी कर
2: नहीं

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तुम बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तुम विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा

0: आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा। बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती।

0: लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी।

0: जगह पुलिस बैठा दी है।
1: क्या?
0: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
1: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
0: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
1: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
0: ठीक है,
1: चल।
0: ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे

0: तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
4: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: सुनते प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक साथी समय वर्तमान अपराह्न 4:03 हो तो आपण को रेनबो साथी नारायण आपण सहित जोड़ी जाइए आशा करूछु आपण समस्त बहुत भल रहिबे बहुत खुशी रहिबे कहीं पागरे मध्य परिवर्तन आसी मौसम रो मध्य मिजाज टिके परिवर्तन आसी सेति पई टिके आपण को मन आ शरीर हल्का थिबो बोली आमे आशा करूछु एफएम रेनबो सहित आपण को जर्नी बहुत खूबसूरत थिबो तेबे आपण को रेनबो साथी नारायण जेतेबेळे हाजिर हो जाइछि आपण को सहित सफर राति 11:00 बजी 10 मिनिट पर्यंत चार रहिबो बहुत किसी मस्ती रही बहुत किसी एंटरटेनमेंट रही गीत रही कथा रही तो आशा करूँ आपने समस्त एफएम रेनबो सहित जोड़ी जी वर्तमान एमती भी तो समय हूँ सोरिला आफ्टरनून जो मीठा मीठा गीतर पसरा तेज आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आज कार्यक्रम को

साढ़े ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेसो चली बर्तमान सुरिला आफ्टरनून सुरिला आफ्टरनून आप पहुंची जाऊँगी मीठा मीठा सुरिला गीत आम सी कथ मन आईनार गीत संपर्क हाँ जीवन प्रत्येक पर्याय सहित जड़ी रही था किसी ना कि गीत छोट बेलने शुणी लोरी स्कूल दिन में गाई प्रार्थना बंधु मान सहित गुणगुणा चंचल सुर किंबा युवावस्था हृदय को छुई जाइथिबा प्रेम गीत सबकिछि आमर जीवन रो एक अंश हो जाए एक निर्दिष्ट गीत सुनिले अनेक वर्ष पुरुणा घटना आखि आगे जीवंत हो जाए मन हुए समय जमिति पछकु फेरी आसछि गीतर ए अलौकिक शक्ति आमको अतीत आ वर्तमान मध्यरे एक सेतु बनाई दैथाय तेणु कहुजे मन आईनारे जदि किछि सबुठारु स्पष्ट भाबे प्रतिफलित हुए सेटा हुछि

समय वर्तमान आपणकर केवल आपणकर डायल इन लाइफ चिटचाट कार्यक्रम को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। सधी आपण माने अपेक्षा करथिबे केतेबेळे गोटे नुआ टॉपिक आपण माने पखरे पहुंचिबो माने आपणको कानरे बाजिबो आउ तापरे पटापट आपण डायल करबा आरंभ करथिबे तेबे आपणकर इच्छा को पटापट माने बहुत जल्दी आमे पूर्ण कर देबो माने आपण मानक पाख को टॉपिक जल्दी आमे पहुंचे दउ छु। टॉपिक आज रही छि स्कूल दिनर सेई गोटे बदमासी माने सेई गुटिए बदमासी आपणकर त एमती अनेक बदमासी थिबो बहुत नखरामी थिबो सेतेबेले छोटो बेले बहुत बदमाश होतबे किंतु वर्तमान आपण माने शांत पड़ जाइथिबे कोहते नै माने अतीतर सेई पिलांकु बेले बेले जेतेबेले आम नजर रे आसजांती आमे देखंती जे पूरा आकाश पाताल तफात सेतेबेले जो नटखट पणिया सेतेबेले जो बदमाश सेतेबेले जो झगड़ाळु मानसिकतार जो पिला माने थांती बड़ा हला परे सेमाने प्रायत बदली जांती किंतु आमे बदलिबार कथा कहुनु से पुरुणा कथा को आज पुंथरे मन पकेबा माने आपण मानक भितरे आपण माने निजे भी छोटा बेले कोन बदमाश करूथले समस्त तो बदमाश करंती आपण माने भी बदमाश हेथिबे बदमाश माने सेमिति किसी बदमाश जोटा आपणकर एबे भी मने थिबो आपणकर आज भी मने पडुथिबो से बदमाश जो गुण जो बदमाशी गुण पई परिवार रो लोक माने आकट करूथले परिवार रो लोक माने बापा मा माने आपण को मारुथले किंबा स्कूल रे सारे मारुथले किंबा गाँव अन्य माने आखि देखौथले एंटी भी किसी ना किसी आपण को मानक भितरे राज थिबो से राज को आपण आज खोलेबार समय आसी जाइछि एफएम रेनबो रे माने एफएम रेनबो रो डायलिन लाइफ चिटचाट कार्यक्रम रे आमा नंबर होउछि 0671230153 ए नंबर जरिया रे आपण माने आमा सहित जोडी परिबे एफएम रेनबो सहित जोडी परिबे आउ ए टॉपिक संपर्क रे आपण को मन रे कथा कहि परिबे स्कूल दिन रो सेई गोठी बदमासी जहाँ आज भी आपणकर मन पड़ुथिबो

0: हाँ साथी आम सहित जोड़ी छंती वर्तमान किए अच्छा देखा आम सहित फोन लाइन रे हेलो
1: हेलो भाई नमस्कार
0: नमस्कार के कौन छंती
1: मु साई कहू छी बेलपडारु
0: साई बेलपडारु कहू छंती साई केमती अछंती भलो अछंती
1: पूरा बबल अछि आपण के जो छन आज मोर फास्ट कॉल लागि जाय छी बोली मु बेसी खुशी अछि
0: हां मे भी बहुत खुशी अछु जे आपण कर फर्स्ट कॉल लागि जाय छी तो कोन कहिबे आज टॉपिक संपर्क रे
1: मु तो एतळ माने छोटो थिली एतळ बहुत दुष्ट थिली अरे मते

0: सभी पुन्थरी स्वागत आपण ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक शो चली बर्तमान आपणकर माने खास आपणकर डायलिन लाइव चिटचाट कार्यक्रम आउ एथिरे आपण टॉपिक रही पिलादिनर से गोटे बदमाशी जहाँ आज भी आपणकर मन पड़ बर्तमान आम सहित किए अच्छा फोन लाइन देखा
1: हेलो हम भाई नमस्कार
0: के कहते परिचय दिखा
1: संगीता पंडा कहते तेलंगा पेंट कटक रु
0: संगीता पंडा कहते तेलंगा पेंट कटक रु बोधे फर्स्ट कॉल कर मन ना भूली जाके कार्यक्रम को आपन को बहुत बहुत स्वागत जनाऊ कौन कह
1: आज बढ़िया टॉपिक रखी सकाले आज ही सकाले मो सा घटे से पुराणा कथा भी बर्तमान मन पकईदे छोट बेले मुझे आज मो पुओ ही से स्कूल रु
0: अरे बाप रे माने समान सेम सेम
1: सेम सेम आज ओदा आई मुंड ओदा आई देह ओदा आई मुझे पचारि बापा देह के ओदा लाने ड्रेस मुंड ओदा है कहला ओदा तो हो गला मोर भी मन पड़ेगा आम भी जो छोट स्कूल जाऊ सत्ता।

0: साढ़े ट्वेंट कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली बर्तमान डायल इन लाइव आज ये टॉपिक रही आपई पिलादिन से गोटे दुष्टामी से बदमाशी जहां आज भी आपंकर मन पड़ नंबर हूँ 0671-230-3153 बर्तमान आम सहित फोन लाइन किए अच्छा देखा हेलो
1: गोटे दुष्ट पिला दुष्टामी मो काम अरे हो अरे गोटे चगला पिला चगलामी मो काम अरे हो तारम तारम तारम तारम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम जय जगन्नाथ नमस्कार
0: जय जगन्नाथ नमस्कार किए कहते अपन तो बहुत बढ़िया गीत बोलीदे फिल्म गीत
1: मु जन रेडियो लभर और जन जातीय अंतर्राष्ट्रीय रेडियो श्रोता नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम
0: अरे नारायण भाई केमती अछंती भलो अछंती
1: आज्ञा बहुत बढ़िया अछि बहुत दिन पर मथि आपन बोले मु कथा हो जाजी
0: अच्छा जो गीतटी गाइले आपन जो गीतटी आपन गाइले से गीत अनुजाई आपन सेतिकि माने बदमाशी ना माने शांत
1: नै मु शांत किंतु स्कूल रे बेले बेले हमर कि बदमाशी होय काई ना आम जो हाई स्कूल पाठ पढ़ु घर आम डेरेज क्लास को गले किसी पिला विरोध सार को कही दिखती मोर थे मन थे हाफ छुट्टी थे पलि मोर फेटे पड़गला आंठली मट खाइली गोटे पिला कही मुझे से पिला को रखा सी तार सैकल थे मुझे भल पी गाड़ी फोपाड़ दे
0: मैंने भी दे माने से ए प्रकार काई के आसे माने पूरा ट्यूबर ट्यूबर जो आपण भोलपिन के बाहर कर दियंती रागो रागो थाए
1: रागो थाए माने से मते सर सर कला कला सर से हाफ सुटरे तो काली दी डाल पड़ै छी सुती भी हमर साथा चले घरम पड़ै लुची सर कहनी तब सर पर फेट पकाइ दे जिंदी तब एकटा सिनो जो सर पर पकेले से देखला फेट पड़ची तब मते आंठेले बाड़ेले कल तू काई गल्लु मुकल सर हमर घर साथा छला कल तू काई कहलु मुकल सर मन नाम कहबे
0: अच्छा
1: तापर मोर आगे थला से पिला पुते मको ठीक आसे तदिन पालन देबी आउ तादिन फालपिन काडी फपाड़ दे ता कोन कोन टापुरी दिल रे साइकिल
0: अच्छा एम तिका काम माने फालपिन बाहर करबा कंटा भर्ती करबा लोकन को जीवा को न दबा टायर को नष्ट कर दबा एम त केथर कोन करछंती आपन आउ का सहित
1: थरे से संगर करथिली
0: आउ कोन नांती आउ कोन नांती
1: ना
0: एबे एबे एबे राग लागले आपन सेमती करिया को इच्छा होइनी
1: ना ना
0: एबे त साइकिल कमी गलानी आपन इजीली करि परिबे एबे एबे गले किंतु धरा पड़ी जिवे कारण आप जो बाइक रे आपन को किसी भर्ती कर पड़ो तार आवाज हम तो धरा पड़ जाए न कि

0: विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।

0: तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। DD News, केवल खबर, पूरी खबर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फ्रेंड्स ट्यून गर्छन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान समय जी इवनिंग अपडेट्स र त इवनिंग अपडेट्स को आपन

보도 수학은 सदी आज हूँ प्रख्यात भारतीय अभिनेता एवं राजनेता राज बब्बर जन्मदिन एफएम रेनबो परिवार तरफ मोर अनेक अनेक शुभेच्छा आउ अभिनंदन अभिनेता राज बब्बर 23 जून माने आज दिन 1952 मसीह उत्तर प्रदेश तुंडला जन्मग्रहण करते हिंदी एवं पंजाबी सिनेमारे तंकर अवदान अत्यंत स्मरणीय रही सहित इंसाफ का तराजू निकाह आज की आवाज दलाल एवं वरीस वरी सफल चलचित्र अभिनय दर्शकों हृदय जीति से अनेक थर फिल्मफेयर पुरस्कार पर नामांकित होता सहित 2015 मसीह इंडियन टेली अवार्डस सम्मानित होते जन्मदिन अवसर में एफएम रेनबो अभिनेता राज बब्बर 23 जून माने आज दिन 1952 मसीह उत्तर प्रदेश तुंडला जन्मग्रहण करते हिंदी एवं पंजाबी सिनेमारे अवदान अत्यंत स्मरणीय रही सहित इंसाफ का तराजू निकाह आज की आवाज दलाल एवं वरीस वरी सफल चलचित्र अभिनय दर्शकों हृदय जीति से अनेक थर फिल्मफेयर पुरस्कार पर नामांकित होता सहित 2015 मसीह इंडियन टेली अवार्डस सम्मानित होते जन्मदिन अवसर में एफएम रेनबो परिवार तरफ आउ थे अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन

आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास मुख्य संवाद द्वितीय पर्यायर आज 65 जन को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित कले राष्ट्रपति 2047 विकसित भारत यात्रार नेतृत्व नेवाकु युव भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आह्वान देले प्रधानमंत्री माई भारत अभियान अधीन देशव्यापी आयोजित हेब वंदे मातरम शिविर कोलकाता आसंताकाल आरंभ हेब प्रथम पर्याय शिविर एवं फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता ग्रुप पर्याय मैच रे आज पर्तुगाल और उज्बेकिस्तान परस्पर को भेटिबे। विस्तृत संवाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज द्वितीय पर्याय पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करिछंती। नूआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पर्यायर 65 जन को सम्मानित दुईट पद्म विभूषण 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सम्मान अंतर्भुक्त। विशिष्ट टेनिस खेला विजय अमृतराज चलचित्र अभिनेता मामूटी प्रच्छदपट गायिका अलका याग्निक एवं क्रिकेटर रोहित शर्मा प्रमुख सम्मानित होती। कला सामाजिक कार्य सार्वजनीन व्यापार विज्ञान एवं वैषयिक वाणिज्य एवं शिल्प औषध साहित्य एवं शिक्षा क्रीड़ा और नागरिक सेवा भली विभिन्न विभाग में उत्कर्ष प्रतिपादन करथिबा व्यक्ति विशेष को प्रत्येक वर्ष 3 वर्ग पद्म विभूषण पद्म भूषण एवं पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करा जाय थाय। गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या घोषित 131 पद्म पुरस्कार घोषित होता से 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण 113 पद्मश्री अंतर्भुक्त। प्रथम पर्याय पुरस्कार समारोह पूर्व अनुषित हो सारी 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार दिगरे यात्रार नेतृत्व नेवाकु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युव प्रशासनिक अधिकारी आह्वान देते। नूआदिल्ली में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 ब्याच्र 183 जन प्रशिक्षार्थी मत विनिमय बेले श्री मोदी यह कहते नागरिक देवभाव उपरे गुरुत्व प्रदान करी श्री मोदी कहते नागरिकों शासन केन्द्र रखार आवश्यकता रही दूरदृष्टि नवसृजन नागरिक केन्द्रिक शासन चिंताधारा सहित राष्ट्र निर्माण में उत्सर्ग करने को प्रशिक्षार्थी श्री मोदी आह्वान देते। भविष्य में प्रत्येक नीति प्रशासनिक निष्पत्ति विकसित भारत गठन दृष्टिकोण नहीं कार्यकारी होगा उचित बोली श्री मोदी कहते आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया उत्पादन क्षेत्र में अभिवृद्धि शक्ति सुरक्षा एवं युववर्गों सुजोग सृष्टि को प्राथमिकता प्रदान करने को श्री मोदी परामर्श देते। एक बैच में 40% अधिक महिला अधिकारी उपस्थिति राष्ट्र निर्माण में महिला वर्धित अंशग्रहण को आलोकपात करुच्ची श्री मोदी कहते। देशरे सार क्षेत्र में सरकार अनेक गुड़िए संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसंती बोली प्रधानमंत्री अर्थनैतिक परामर्श

सदैव उनको चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्वागत आपण मनको आज रो संध्यासर कार्यक्रम को सदी संध्यासर रे आपण माने एकजुट तो निश्चित थिबे काहेकिना वर्तमान समय आपण मनकर एफएम रेनबो सहित समापित

सतीटून को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्वागत अपन मानंकु आजर गीतरे मित्र कार्यक्रम को जोटी आपण सुनि परिबे किछि नुवा ओडिया एवं हिंदी चलचित्र गीत आ ता सहित किछि रोमांटिक कथा आपण मानक पाई साथी आज गीत मित्र आमर आज भावनार जो विषय हो मनर स्वर आपण मनर स्वर को केबे सुनी मनर कथा केबे शब्दरे कह जाएनि आउ केबे निरवतारे लुचि रहि जाए कहार गोटे हस एक चाहणी किंबा एक मीठा कथा

0: ଟୁନ୍କୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲିକେଟ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों

0: को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक।

0: बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन,

0: ये लो, हम घोड़े से गिर गए।
1: कार्यक्रम शेष शुणा अभिलाष कथचित्र गीत गई हेमलता।

नारायण प्रधान बीबरमपुर बगुड़ा गंजाम शुणा चाहते धर्मात्मा मुफीर गीत गई मुकेश एवं कांचन नेक्स्ट एसएमएस कर डॉक्टर अभय राउत सोनो राजा साहेब शुभम मामुनी पूजालीन परिडा

नेक्स्ट एसपीएस क्वेश्चन थी गांव हरडीय चंडिल झारखंड से तुलसीदास महतो कल्पना महतो मनोरमा महतो मनमोहिनी महतो दीनबंधु महतो आपका फरमाइश गाना तो कुछ भी नहीं लेकिन आप सुनना चाहते हैं मेरे पसंद से तो मैंने मेरा पसंद जब जब फूल खिले मूवी से एक गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो उसे सुना देते हैं आपको तो ठीक है फिर दूसरा एसपीएस हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा दतरंगी भाटापरा छत्तीसगढ़ से आपका फरमाइश तेजाब मूवी से एक सुंदर सा गाना गीत गाए हैं नितिन मुकेश अलका याग्निक और समीर कुमार

ससरे आ गोटे मेसेज देखा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी आपका फरमाइश गीत नमकलाल मूवी से आशा भोसले जी की आवाज में

0: पेरिसे सुकरीबा आज रेनबो एसपीएसर कार्यक्रम ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समवर्तन राति 11 बजे को जाउची हिंदी रे संवाद रे लेकर प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रु।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्र
3: नमस्कार। आज अंतिम मुख्य संवाद सह सत्यरंजन महापात्र। द्वितीय पर्यायर आज 65 जन पद्म पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खरीफ ऋतु और एलनीनोर मुकाबला नहीं केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षत समीक्षा बैठक अनुष्ठित। तमिलनाडुर तिरुवल्लुरठारे ग्यास लिक् दुर्घटन प्राण हरैथिबा ओडिया श्रमिक निकट आत्मीयों सहायता राशि को राज्य सरकार 4 लाख 10 लाख को वृद्धि करछन्ति। इतिमध्यरे ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 7 को वृद्धि पाइथिबा सूचना।

क्षमा ब्रह्मा, क्षमा सत्य, क्षमा भूत, क्षमा भविष्य, क्षमा तप एवं क्षमा पवित्रता मध्य क्षमा ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखी। तेबे प्रत्येक जन पाखे क्यों गुण था न था क्षमा कर देवार गुण निहाती रहा अपरिहार्य। सदी आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक्रु आरंभ करीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाड़ी।

ए जो भावर डोरी जहाँ भक्ता भगवान को बांधि रखी थाए गोटे अदृश्य डोर ए भावर डोरी लगे जमी ए दुनिया रा सबुठार सुंदर डोरी आउ एई डोरी रे बंधा भकतटी जगन्नाथ नाथ को कही परे कालिया तू भारी छड़िया तते केते गुहारी कले भी काहेकि सुणु ना हो मोर चका डोरिया अभिमान तो हुए किंतु काहेकि केजाणी से भावर लुहरे मिले जाए सकल अभिमान निमिषके से ही कुहुक भरा चाहणी रे चका आखिरे मुरुकी हसरे सुंदर सुंदर बदन रे सुंदर सुंदर से नयन रे मिछ दुनियार से गोटे सत्य को भकत जमिति सतरे बुझे जाय परे आउ तारी चरण रे सबु अभिमान को सभी अली को समर्पित सब प्रश्नर उत्तर ता लुहरे लुहरे भसई दिए आउ सबु भावर आधार केवल से चकाखी बोली जानी परे तेणु जेते दुख थाउ जेते अभिमान थाउ जेते कष्ट थाउ भाव बढ़ी चलू।

ଏହି ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଜାନା ଲୁଚିକି ରହିଛି ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ ଖଜାନା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଏଇ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ବା ବର୍ଷାଞ୍ଚଳ ବା ବର୍ଷା ଅରଣ୍ୟରେ। वेलकम बैक ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो सुबह सकाळ म्युझिकल हम सफर विश्वजीत अच्छे आपण मानक सांगरे आम्ही माने जाणीवा दरकार जो प्रकृति रे सब खजाना रुचिक रहिचे रेन फॉरेस्ट भितरे आमे जो व्यवहार करथवा आधुनिक औषधर प्राय 25% माने 25% उपादान आमे पाउछे ए रेन फॉरेस्ट रु यार कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक मॉडर्न डे रो ए जो औषधर कथा कहुछे बा जो मेडिसिन्स रो कथा आमे कहुछे क्षेत्र निहाती भाव रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ए रेन फॉरेस्ट रो गछ माने आम पृथ्वीर मोट भूभागर 3% अंचल वर्षारण्य अच्छी रेन फॉरेस्ट अच्छी किंतु अधारू अधिक जीवन अधारू अधिक जीवजंतु एवं गछलता एवं उपकारी गछलता एवं प्राकृतिक उपादान को आमको गिफ्ट भाव दौर ए रेन फॉरेस्ट आज दिन में केवल तार उपकारिता तार सौंदर्य को बखाणवार कथा नुहे साथी बर तार जत्न विषय मध्य भावार समय आसी कारण हुए तो आम आज आमाजन जंगल को जाकि गोटे गछ लगे पार्वानी सत कि आम पाखे तो पार आम आखपाखर अंचल तो पार सबुजीमा को सुरक्षित तो रखिपर कागजर अप

0: ତେବେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହମସଫର ବିଶ୍ୱଜିତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଭ ସକାଳକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनल

चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक साथी म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत अच्छे आपण मन का संगरे आपण मन अछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे मॉर्निंग मेलोडी रे आपण मन को कहू छी जे आज वर्ल्ड संतूर डे अवसर रे संतूर बा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इत्ते सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ता विषय रे किछि कथा एवं कहि के जाइथिले जेमती जे हिस्ट्री यार हिस्ट्री संतूर केमिति डेवलप्ड हला संतूर केमिति हमर इंडियन म्यूजिक को आसला इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आसला ता विषय आप मन को टिके जणैबे सततंत्री बिना जतेबेले परवर्ती समय रे पारस्य परिश बा ईरान देखि काश्मीर रे उपत्यका रे पहुंचला सेठी यार ना हला संतूर काश्मीर रो सूफी संगीत सूफियाना मकाम रे गुटे प्रमुख वाद्ययंत्र भाबरे व्यवहार हला संतूर सबुठारु बड़ कथा हूँ तार डिजाइन आप देखिथे जो संतूर को गोटे चतुर्भुज आकार काठ बॉक्स जो थे प्राय शहेटी तार थाए स्ट्रिंग्स थाए या बजेबा हाथ रे व्यवहार करा जाए बर हाथ रे धरिकी अल्प बंका होता दुईट छोट काठर चामच भली आकार काठी व्यवहार करा जाए जहाँ कलाम बैलेंस कहुए जितेबले काठी तार उपर हालुका भाव पिटी हुए से गोटे डिवाइन बहुत ही सुंदर स्वर झंकृत हुए जहां शुणुवा प्रत्येक हृदय को हजे दे पारे तबे काश्मीर रही लोकवाद्य व फोक इंस्ट्रूमेंट केमिति भारतीय शास्त्रीय संगीत मंच में पहुंचला सेथिपाई आमको जने महान संगीतकार ना नवाकु पड़िबो जितेबेले आकु गोष्ठीगत लोकवाद्य बोली कहा जाउथला सेतेबेले भारतीय शास्त्रीय संगीत बा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रो स्टेज को याकु आनिबार सबु क्रेडिट जाए पंडित शिव कुमार शर्मा को सी ए इंस्ट्रूमेंट रे अनेक गुडिये चेंजेस कले जेमतिक शास्त्रीय संगीत रो मीन्ड बा गोटे स्वर रु आउ गोटे स्वर को स्मूथली टेक ऑफ करिबा स्मूथली जीवार कथा को संतूर रे बजेबा संभव हैला एवं सेथिपाई देखंतु आज संतूर बिना भारतीय शास्त्रीय संगीत मंच बा क्लासिकल म्यूजिक रो मंच बहुत समय रे अधा अधुरा लगे जमीती शास्त्रीय संगीत कथा कहले सेमती आ गोटे सुंदर कथा हूँ आम इंडियन म्यूजिक रे आम इंडियन सिनेमा म्यूजिक रे मध्य ए संतूर रो आधिपत्य धीरे धीरे बढ़िबा पई लागिला ताधिर मध्य शिव कुमार शर्मा कर बहुत गुड़िया अवदान अच्छी सिलसिला हो चांदनी हो लम्हे डर ए भली सब चलचित्र गुड़ी करे जेते बड़े गीतर कथा आसिला भुवन हरी शिव हरी जेते बड़े कंपोजिशन कले सेमान कर म्यूजिक रे ए सुंदर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बा संतूर रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट भाव रे व्यवहार करा गला अनेक रोमांटिक गीत रे बैकग्राउंड स्कोरिंग रे बा बीजीएम रे ए संतूर को व्यवहार करा गला एवं तार गुटे नियारा चमक सृष्टि हला सिनेमा परदारे एवं सिनेमा संगीत रे मध्य ए जेमती ब्यूटीफुल ट्रैक टी चांदनी रो जोथरे बहुत सुंदर भाव रे यूज करा जाय छी संतूर को

0: नम्र रहिबा गोटे व्यक्तित्वर परिचयकु आहुरी जेतिकि प्रस्फुटित करे क्षमा करिबा नम्र रहिबा एवं ता सहित आउ गोटे जिनस मध्य आड हि जाय जे एजु बहुत लोक माने बहुत विषय रे निजर मत प्रकाश करथांती ता विषय रे एमितिक बिच लोक भी थांती जो माने कम कहिबा पई पसंद करंती एवं जेतिकि कहंती पूरा परफेक्ट कथा कहंती आउ सेते बेले आमे को बा ये निजर गोटे व्यक्तित्व को बजाय रखिछंती बा मेंटेन करिछंती जहाँ अनेक लोकों को भारी खुशी करे एवं तांका प्रति अट्रैक्ट करे एवं तांका व्यक्तित्व ही समस्तंग भीड़ भीतरे तांको अलग करी दिए सेमती व्यक्तित्व आपन को पसंद ना आपन देखंती दक्षता माने पर्सनालिटी ना पर्सन भीतर थिबा एबिलिटी याकु नै कि कथा अछि आज हमें डायल इन लाइफ चिट चैट रे गोटे पर गोटे कॉल आसी जाउछि देखिबा आ गोटे कॉल आसी जाइछि कि करछंती कोन करछंती आ कोन कहउछंती तांकर मत नमस्कार की कोथले कोठु कोथले
1: विश्वजी भाई नमस्कार मेडिकल कॉलोनी टुनाइना को जे आज्ञा
0: टुनाइना नमस्कार
1: मां पाखरे प्रार्थना को जे मा सारा विश्वजी भाई को भलो रे खुशी रे रखंतु एतिक मां को पाखरे प्रार्थना को
0: भाई आपन को पाई मध्ये हमें समस्त प्रार्थना करूछु आपन केमती अछंती कोंतु
1: आज्ञा भलो अछि बहुत दिन परे मु आज
0: आज्ञा आज्ञा
1: पुणी
0: जोड़ी हेले बहुत खुशी लगुछ
1: नुवा श्रोता ने जोड़ी हेबे से तो चारि दिसि
0: बढ़िया कथा बहुत बढ़िया कथा टुनाई ने कौन कहबे पर्सनालिटी ना पर्सन भीतर थिबा एबिलिटी कोटा बेसी जरूरी
1: देखम तो दक्षता थिले पर्सनालिटी नथिले किछि करियो माने समस्त आप्य हेई परिवे निज व्यवहार कथावार्ता एवं चालीचरण आचरण उच्चारण सब थिबा निहाती दरकार दक्षता नथिले भी एवढ्या लोकांको बहुत लोक प्रशंसा करिवे बुझले दक्षता थाइकि भी लोकमानको माने चिडन्ते एटा कथाबार्ता व्यवहार
0: बढिया कथा ठिक
1: कहिले चिडन्ते गोटे उदाहरण दउछि मोर गोटे हेल्थ सेक्रेटरी थिले मीना गुप्ता जे मु तांको थरे मो चाकिरी विषय देखा करिया जाइथिलि सेक्रेटरी अफिस जाइकि पहुँचिला बेलकु मते टिकट देले माने टिकट माने लाइन तांकर सब परिसन टिकट देकि गलि मते कहले बसंतु आगे बसंत न बसिले मु आपन कथा
0: सुझिले
1: मु डरी जाइथि गोटे सेकेटरी मते उठिके आसि बसेल तापरे पानी देले सब कथा सुनले कहले दिटा मु खायाक जीवि आपन काम दिटा बेले मु साढे दिटा बेले आपन काम करदेवि आपन बाहारे थिबे मु सब जानिली ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଡାକି ସେ ଯାହା କଲେ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ବାହାରକୁ କରିଦେବି ମୁଁ ବି ଯାହା କରିଦେଲି ମୁଁ ବାହାରେ ବସାଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିକି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ପୁଣି ବିଶେଷ ସାମରୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସେସନ ସବୁ ଡାକିକି ମୋ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅରଙ୍ଗପାଡି ବ୍ୟବହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇଏ ବୁଝା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରୋଗ ଭଲ
0: ହେଇଯିବ बहुत बहुत धन्यवाद भाई कॉल कले आपनकर इते सुंदर माता मत आम सहित शेयर कले आपनकर कथा गुडी को बहुत बढ़िया लागे
1: आपनकर बगर पात्र आप जी विश्व दिव्य को बहुत खुशी रे रखंतु
0: आगे
1: दैली नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार बढ़िया कथा टी कहले जे दक्षता निहाती भाबरे କାହା ନା କାହା ପାଖରେ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯୋଟେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପ୍ରତି କିଛି ଉପକାର କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ମିଠା କଥା ଇଏ ହିଁ ସେ ମନର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ଲେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥାଏ କେବଳ ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସେ ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୋତା ଭାଇଙ୍କ ମତରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପର୍ସନାଲିଟି ନା ପର୍ସନ ଭିତରେ ଥିବା ଆବିଲିଟି କଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0671-230-3153 ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଲ୍ରେ ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଥିଲେ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ
2: ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର
0: ନମସ୍କାର
2: ମୁଁ ରେଡିଓ ଲଭର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ବି ବରହମପୁର ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ
0: ନାରାୟଣ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନାରାୟଣ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପର୍ସନାଲିଟି ନା ପର୍ସନ ଭିତରେ ଥିବା ଆବିଲିଟି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବେଶୀ ଜରୁରୀ
2: ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ରୂପ ଥିଲେ ପଛେ ଥାଉ ହଜାର

0: वेलकम बैक टू इनकर्जन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो आपको हो चंती दिल से दिल तक
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार

भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाश

ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଭସା ଭସା ମେଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋର ପରିସର ଭିତରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମେଘରେ ଭାସିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହମସଫର ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଇସ୍ ପୂରଣ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫର୍ମାଇସ୍ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ନାୟକ ପାରାଦୀପରୁ। ଦିଲୀପ ଭାଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। ए ब्यूटीफुल ट्रैक टी फ्रॉम द मूवी पीके। नमस्कार भाई आज सब कार्यक्रम बहुत सुंदर लगला। धन्यवाद आपन को सबुदिन एमती हस खुशी था। दिलीप भाई डेडिकेट करके ए ब्यूटीफुल ट्रैक टी प्ले कर दबा एवं परे परे स्मिता नेहाल फ्रॉम भुवनेश्वर सुनिबा पई चाहिचंती अरमान मल्लिक कंठरे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक निश्चित भाव प्ले कर दबो। स्टे ट्यून्ड 200.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो। अकुथांतु दिल से दिल तक।

से कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कलाकार कार्यक्रम आपने शुणुंट ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आज आम माला सिन्हा विषय कथा जिते से बेंगली इंडस्ट्री रे काम करुले गोटे बेंगली फिल्म ही बॉम्बे आसीथिले माने बेंगली फिल्म रो काम पई ही से बॉम्बे आसीथिले आउ सेठी काम पई तांकर देखा हेथिला एक्ट्रेस गीता बाली को संगरे आउ गीता बाली तांको नेके डायरेक्टर केदार शर्मा को सहित भेट करै देथिले जेतेबेले से केदार शर्मा को सहित भेट करले ना तांको लाइफ सेठो ही चेंज हला कहा जाय ना भाग्य माने डेस्टिनी जुआडे नबार थिबो ना से आपन को आपे आपे नै जिवो किनु केदार शर्मा माला सिन्हा को निज फिल्म रंगीन राते रे कास्ट कले तापर परे आसिला तांकर फिल्म बादशाह एकादशी लालबती फिर सुभोगी आउ ए सब फिल्म सहित तांकर करियर आगो को बढ़ी चलिला माला सिन्हा ना केबे बी को कंट्रोवर्सी रे नथिले सब बेले निज करियर आउ पर्सनल लाइफ को से पूरा पूरी अलगा रखुथिले तेनो तांको मैरिज सक्सेसफुल भी हला आउ तांकर प्रत्येक टी काम बहुत ही निखुण माने परफेक्ट जो कहंती ना परफेक्ट भी थिला तेबे माला सिन्हा को विषय रे तो बहुत किछि कथा कहली तांको अभिनीत चलचित्र रुआ गोटे सुंदर गीत बर्तमान आपण मानक पाई

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11

बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

अछि अनेक कथा अकोहा रहिछि किछि नीरवता हसर आडरे लुचि रही कहे से निजर अनेक व्यथा स्वप्नर रंग आखिरे भरी चाले जीवनर पथ रे से आगे आगे किछि आशा किछि अभिमान रही जाए मने गुप्त गीत हे श्रोता बंधु वन्स अगेन स्वागत करुछि आपण मानंकु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कर एक दिल से दिल तक मु आपणक कोयल कथा आउ कथार स्वर होछि गीत आम मन होछि भावनार गोटे विराट बड़ समुद्र विराट बड़ सागर आउ ई मनरे इमते अनेक कथा जन्म हेथाय किंतु सब कथा को ना आमे मुहरे कहि पारि न थाउ बहुत किछि कथा एमते थाए जोडा आमे मुहरे कहि पारि न थाउ बा कहिबा संभव हे न थाए केते एमति भावना केते एमति अनुभूति केते एमति स्वप्न अमर मन भितरे हि रहि जाय आउ एई अकोहा कथा गुडाक जेतेबेले सुर आउ ताल को पाई जाए सुर आउ ताल सहित मिसि जाए सेतेबेले सेगुडिक गीत हे जाए श्रोता बंधु ट्यून करी छन आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक वर्तमान आरंभ करिबा आम कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत आम मनर अकुहा कथा हेउछि गीत एक कथा कहिले बिल्कुल भूल हबनी आउ काहे कि आम एक कथा कहिबा से विषय रे आज आम चर्चा करिबा ता सहित सुनिबा किछि मनर कथा कहुथबा मीठा मीठा गीत को

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ମନର କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରେ ଗୀତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୀତ ହେଉଛି ଆମ ମନର ଅକୁହା ସଙ୍ଗୀତ। श्रोता बंधु ट्यून करिछंती आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल सी दिल तक कोयला छ आपण मानक साथी रे आजिरो ए दिन रे तेबे आमो मनर अकुहा कथा हेउछि गीत काहे कि ना गीत माध्यम रे केवल आमे निजो भावना को नहे बरंग समाज रो अनेक गुडिए परिस्थिति को मध्य देखि पारु। सत कहिबाकु गले किछि गीत एमिति अछि जहा अन्य माने आमो मानन को प्रेरणा दिए, आउ किछि गीत एमिति भी अछि जहा नुआ आशा सृष्टि करि पारे आमो मनरे, आउ किछि गीत एमिति भी अछि जहा आमो को जीवन र रास्ता रे आगो को बढ़िबारे आउ जीवन को नुआ दिग देखेबारे मध्य सहाय्य करे। सेइति पई त कहा जाय मनर अकुहा कथा हेउछि गीत, आउ मनर दर्पण हेउछि गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहंतु।
2: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाळ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांती लागिबा, प्रबल सोसो लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्क

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से दियोशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा

फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।